0: नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री दशरथ नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री कैकेयी नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री सुमित्रा नंदन भगवान की
1: जय।
0: श्री चारो भैयन की
1: जय।
0: श्री हनुमान देव महाराज की
1: जय।
0: श्री राम जन्मभूमि की
1: जय।
0: श्री कृष्ण जन्मभूमि की
1: जय।
0: श्री काशी विश्वनाथ की
1: जय।
0: श्री अयोध्या धाम की
1: जय।
0: श्री सरयू महारानी की
1: जय।
0: जगद्गुरु स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज की
1: जय।
0: गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की
1: जय।
0: समस्त पूर्वाचार्यों की
1: जय।
0: सर्व संत वैष्णव भगवान की
1: जय।
0: सत्य सनातन धर्म की
1: जय।
0: गो माता की
1: जय।
0: भारत माता की
1: जय।
0: प्रातः

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

श्री गोविंद गीता अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। श्री भगवान अनेक आध्यात्मिक विषयों जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ आदि की व्यापक व्याख्या करते हुए ज्ञान अज्ञान के लक्षणों को स्पष्ट करते हैं। जनार्दन कहते हैं कि सर्वव्यापक सर्वहृदय स्थित ज्योति स्रोत परमात्मा ही ज्ञान है, ज्ञेय है, वह ज्ञान का परम लक्ष्य है। श्री गोविंद के शब्दों में

ऐसे परमात्मा को कुछ लोग ध्यान से, कुछ ज्ञान से, कुछ निष्काम कर्म से, कुछ सतत उपासना से व कुछ महिमा श्रवण से ही जान पाते हैं और अंततः प्राप्त करते हैं। प्रभु कहते हैं,

0: जाम दीप जल हल पुर देवता देवन किरदारा बार हो माय माई देवन किरदारा बार हो माय जाम दीप जल हल खंड माता देवन के हो दारा बार हो माय कुन देवता के राचय बिहद्रा कौन बिहाय लय जाय हो माय माई नर बदिया के राचय बिहद्रा सोन बिहाय लय जाय हो माय माई सोन बिहाय लय जाय।
1: बहुत पुरानी बात है, अमरकंटक में सोन और नर्मदा का ब्याह तय हुआ था। बारात चल पड़ी थी, नर्मदा ने अपनी नाइन जोहिला को सजा धजा कर भेजा कि जरा देखो तो बारात की शोभा कैसी है। जब कुछ देर हो गई और जोहिला लौटी नहीं तो नर्मदा जी खुद निकल पड़ी खोज खबर लेने। देखती क्या है कि सोन और जोहिला आपस में हंस बोल रहे हैं। बस फिर क्या था, गुस्से में तमतमाती नर्मदा ने मुंह फेरा और चल पड़ी पश्चिम की ओर। फिर तो वो कुंवारी ही रह गईं। उधर सोन पछताते चल पड़े पूरब दिशा में, जोहिला भी फिर सोन के साथ होली।
0: इतना लसुन के माइनर बदिया पाँव पे जनिया जो दे हो माय पाए पे जनिया ला दे हो माय।
2: कैसी अनूठी कल्पना सजाई है इस लोकगीतकार के मन ने। बात कुछ ऐसी ही है कि शहडोल जिले के एक ही स्थान अमरकंटक से निकली है नर्मदा भी, सोन भी और जोहिला भी, पर ये बहती हैं अलग अलग दिशाओं में।
1: इसी भौगोलिक तथ्य से रचा गया है ये लोक मिथक, जो मध्य प्रदेश में बघेल खंड अंचल में थोड़ा बहुत बदलकर बार बार मिलता है। ऐसी टीस है इस कथा में कि एकदम तरुण हिंदी कवि एकांत श्रीवास्तव की कविता अमरकंटक में भी इसकी गूंज सुनाई पड़ती है। जब फैल जाती है रात की चादर, नींद के धुएं में डूब जाते हैं पेड़ फूल और पहाड़, इसकी गहरी घाटियों में गूंजती है सोन की पुकार, नर्मदा ओ नर्मदा ओ नर्मदा ओ, और पहाड़ों के सीने में ढुलकते हैं नर्मदा के आंसू।
2: विंध्य पर्वत श्रेणी में मेकल पर्वत पर बसा अमरकंटक पहले आम्रकूट कहलाता था। इसकी प्राकृतिक सुषमा का अभिभूत वर्णन महाकवि कालिदास की मेघदूत में भी मिलता है। अमरकंटक शताब्दियों से आस्था और उपासना का पुनीत स्थान रहा है।
1: अमरकंटक के पूर्वी छोर पर है सोनमुड़ा। यहाँ एक छोटे से कुंड से रिश्ते जल के धीमे संकोची और क्षीण प्रवाह को देखकर कौन कल्पना कर सकता है कि यही सोनभद्र है।
2: हमारे पौराणिक भूगोल में तीन को महानद माना गया है, शेष नदियाँ हैं। इनमें सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलती हैं। विंध्याचल से निकलकर भारत के हृदय स्थल यानी हिंदी भाषी प्रदेश में अपने उद्दाम वेग से पराक्रम दिखाने वाला अकेला महानद है सोनभद्र यानी सोन।
3: नमस्ते ब्रह्मपुत्राय सोनभद्राय ते नमः, मेकलोद्भवाय बृहते सर्व पाप हराय च।
1: ये है आग्नेय पुराण वर्णित सोन महात्म्य का शुभारंभ। सोनभद्र को ब्रह्मा का पुत्र भी माना गया है और इसके क्षेत्र को निश्चय पुण्य देने वाला और मंगलकारक कहा गया है।
2: किंतु इस महाप्रतापी सोन को अमरकंटक में शिशु रूप में एक एक डग भरता देखना अनूठा ही अनुभव है। सोनमुड़ा से कुछ ही आगे बढ़कर मेकल पर्वत की खड़ी ढलान पर सोन जैसे उछाल सी भरता है और फिर
4: नीचे लुप्त हो जाता है।
2: इस स्थल पर वर्षों निवास किया है स्वामी गोपाल दास जी ने। उनकी स्मृतियां पुरानी और लगाव गहरा है।
5: वन्य पशुओं का तो वहाँ अगणित सीमा में रहा करते थे, चार बजे संध्या के समय से तो यहाँ आवागमन ही बंद हो जाता था। उन्हीं की ही चारों तरफ शोर मची रहती थी। इस अमरकंटक क्षेत्र में विश्व विख्यात तपोवन होते हुए भी यहाँ प्रसिद्ध जड़ी बूटियों का भी काफ़ी मात्रा में, जैसे कि ब्रह्मी है और कामराज, तेजराज, भोजराज, बलराज, इस प्रकार, जैसे कि शंखपुष्पी है और रुद्रवंती है, गुलबकावली नाम का एक पुष्प है और संजीवनी बूटी भी पाई जाती थी।
1: सोनमुंडा से कुछ आधुनिक ढंग का रिश्ता है यहाँ के विकास कार्य से जुड़े श्री अंबिका प्रसाद तिवारी का।
6: प्राकृतिक दृश्य के बारे में तो जो कश्मीर के बारे में लोग कहते हैं कि कश्मीर है, तो ये कश्मीर है ही। यहाँ मानसून दिन प्रतिदिन बदल जाता है, कभी बदल, कभी बूंदाबांदी, कभी तेज हवा, कभी पानी और कभी हल्की फुल्की गर्मी। भविष्य के लिए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा यहाँ विकास करना उचित नहीं है, यहाँ की नेचुरलिटी जो है वो समाप्त हो जाएगी।

0: सोनमुड़ा के नीचे घाटी में लोप के बाद भूमि पर सोन के दोबारा दर्शन होते हैं। पड़ोस के बिलासपुर जिले में पेंड्रा से कुछ दूर सोन बचरवार नाम के गांव में यहाँ एक पक्का कुंड है जो सोन कुंड ही कहलाता है।
1: इस कुंड का जल एक पतली नाली द्वारा बारहों महीने निकलकर खेतों में ही धीरे धीरे आगे बढ़ता दिख पड़ता है। बस शुरू हो जाती है सोन की प्रकट यात्रा। पहले उत्तर, फिर उत्तर पश्चिम और अंततः पूर्वोत्तर।

0: उत्तर दिशा की ओर।
1: ये यात्रा शांति पाती है। बिहार की राजधानी पटना से पश्चिम की ओर भोजपुर जिले में मनेर के पास हरदी छपरा के सामने, जहां सोन का संगम गंगा से होता है।

0: उद्गम से संगम तक सोन चलता है 784 किलोमीटर, 500 किलोमीटर मध्य प्रदेश में, 82 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में और 202 किलोमीटर बिहार में।
1: यह भारतीय उपमहाद्वीप का 14वां लंबा जल प्रवाह है। इसका कुल जल ग्रहण क्षेत्र है लगभग 71,000 वर्ग किलोमीटर।
0: इस बीच बारी बारी से आकर इसमें मिलते जाते हैं छोटे बड़े नाले और सहायक नदियाँ। सोन की कुछ प्रमुख शक्ति धाराएँ हैं केवई, तिपान, कुनुक, जोहिला, कैमूरी महानदी, बनास, गोपद, रेड या रिहंद, घाघर, कनहर, पंडा और उत्तर कोइल।
1: समूचे सोन क्षेत्र की भूमि के 3 मुख्य प्रकार हैं, प्राचीन पहाड़ी प्रदेश, पठारी भूभाग और नदियों के रचे हुए मैदान। पहाड़ों में कैमूर कहंजुआ, सतपुड़ा मैकल और भीतरीगढ़ मैकल विशेष उल्लेखनीय हैं।
0: सोन का काफी क्षेत्र अब भी बहुत दुर्गम घने जंगलों तथा वन्य प्राणियों से भरा पड़ा है, जहाँ निवास करती हैं अनेक जनजातियाँ।
1: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले की जनजातीय जीवन शैली और संस्कृति का विभोर वर्णन करते हुए साहित्यकार और सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र नीरव।
2: रेणुका सोन के संगम पर अगोरी नाम का स्थान है, जिसे हम इतिहास के विभिन्न चरणों का साक्षी मान सकते हैं। और यहाँ पर सोन सिर्फ विंध्य की एक अप्रतिम नदी ही नहीं, बल्कि इतिहास की साक्षी के रूप में हमारे सामने आती है, जहाँ हम एक तरफ कई करोड़ साल पुराने जीवाश्म सलखम नामक स्थान पर देखते हैं, जहाँ पर अपने आँखों से देख सकते हैं पथराए हुए पेड़ उस काल के, जब यहाँ कभी समुद्र बहता था। उसके बाद हम सोन के ही तट पर देख सकते हैं भारशिव नाग काल के, बुद्ध काल के पहले के भी शैव सभ्यता के अवशेष शिवद्वार में, गौरी शंकर बरेला में, और उसके बाद गुप्त काल के, मध्य काल के चंदेल और गहरवार काल के ऐतिहासिक अवशेष कुंडवासिनी तीर्थ, बंसरा देवी, गौरी शंकर, बरेला, गोठानी तीर्थ, अमिला और आगे जा कर के विभिन्न स्थानों पर राजा नल, कंडाकोट, सब सोन के तटों पर बसे हुए ऐतिहासिक स्थल हैं। सोन सिर्फ एक हरी सुनहरी नदी ही नहीं है, इसके तट पर वन्य सभ्यता, वनवासियों की गृहस्थियाँ बसी आदिकाल से अब तक, बल्कि सोन एक पूरी की पूरी संस्कृति है, जो यह बतलाती है कि मध्य भारत में, मतलब गर्म पहाड़ों में, किस प्रकार के लोग किस तरह के जीवन जीते रहे हैं।
0: जनजातीय बोलियों में मुंडारी, खरवारी, बिरहोड़ी, कोरवा, आसुरी, कुड़ुक और गोंडी प्रमुख हैं। आर्य भाषा परिवार की बोलियां हैं छत्तीसगढ़ी, बघेली, भोजपुरी और मगही।
1: सोन के मार्ग में पड़ने वाली मध्य प्रदेश के शहडोल और सीधी जिलों में बघेली ही बोली जाती है।

0: सीधी निवासी श्री बद्रीनाथ श्रीवास्तव इस अंचल में खूब घूमे हैं और एक अनुभव सिद्ध विचार उनके पास है।
1: आज़ादी के बाद से लोगों का दृष्टिकोण बदला है और अब उसको वो एक जीवन धारा के रूप में देखना चाहते हैं कि उससे सिंचाई के लिए पानी मिले, वहाँ पर वन प्राणी वगैरह जो है स्थल ऐसे बने, पर्यटन के लिए कोई स्थानों का चुनाव हो सके।
2: सीधे जिले में ही प्रसिद्ध बगदरा अभयारण्य के पास स्थित है सोन घड़ियाल अभयारण्य। सीधी के जिला वन अधिकारी डॉक्टर जे के उपाध्याय के शब्दों में,
3: सोन नदी में प्राकृतिक रूप से घड़ियाल और मगर पाए जाते थे। उनके आबादी को बढ़ाने के लिए सोन घड़ियाल अभ्यारण्य का गठन किया गया। ये सन 82 से प्रारंभ की गई है। इसमें मुख्यतया दो जगह पर घड़ियाल काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं, भंवरसैन जहाँ के नदी गहरी है और दूसरा हमारा एक स्थल जोगदाहा है जहाँ पर के घड़ियाल काफ़ी मात्रा में मिल सकते हैं। वर्तमान में लगभग इनकी संख्या 124 है। इसे लगा हुआ क्षेत्र हमारा बगदरा अभयारण्य का है जो कि काले हिरणों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
0: प्रेम, एकनिष्ठ समर्पण और शूरवीरता से ओतप्रोत लोरी गाथा का जन्म भी सोनांचल में ही हुआ था, जहाँ से ये लगभग समूचे हिंदी प्रदेश में रूप बदल बदल कर पहुँच गई।

0: मालिक दिले हुआली लार कहा कि आज इतना नौकाए नदी सोन भद्र पर बा कुल वो पार खुटियावल बा कैसे बरतिया उतर चली गोसाइया।
1: सोनभद्र जिले के मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज के निवासी और लोक संस्कृति मर्मज्ञ डॉक्टर अर्जुन दास केसरी बताते हैं,
2: आपके मध्य प्रदेश बिहार और उत्तर प्रदेश की त्रिकोणीय संस्कृति का एक प्रकार से संगम हुआ है। यहाँ की जनजातियों का मुख्य नृत्य कर्मा है और कर्मा के साथ साथ कोलों का कोलदहकी है। अगरिया जात यहाँ की बड़ी मशहूर जात जनजाति है, उनका अगरही है, मुसहरों का मुसरही है। इसी तरह से और भी जितनी जनजातियाँ हैं उन जनजातियों के अलग अलग नृत्य यहाँ लोकप्रिय हैं। इनसे ये जाहिर होता है कि आदिवासियों का संपूर्ण जीवन, यहाँ की संपूर्ण सोन घाटी की संस्कृति एक प्रकार से संगीत और नृत्य से जुड़ी हुई है। यहाँ कई गाथाएं लोकप्रिय हुई हैं।

0: कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, कच्चा लोहा, बॉक्साइट, चीनी मिट्टी और पायराइट जैसे बहुउपयोगी खनिजों से यह क्षेत्र समृद्ध है।
1: कोयले की बहुतायत के कारण सीधी जिले की बैढ़न तहसील और सोनभद्र जिले में तो जैसे देश की ऊर्जा राजधानी ही स्थापित हो गई है। एनटीपीसी की विंध्याचल वृहद ताप परियोजना के सहायक जनसंपर्क अधिकारी श्री मंजुल तिवारी के शब्दों में,
2: भारत सरकार ने और पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ये सोचा कि क्यों ना हम पावर स्टेशन वहाँ बनाए जहाँ पर कोयले की इस तरह की अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्धि है। तो इस तरह से सोन घाटी के विस्तृत क्षेत्र में धीरे धीरे विकास की गतिविधियाँ शुरू हुई। कोयलों की खदानें NCL के सौजन्य से धीरे धीरे बढ़ती गईं और आज 11 खदानें यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा NTPC ने 3 परियोजनाएं यहाँ पे लगाईं, विंध्याचल परियोजना, सिंगरौली परियोजना एवं रिहन परियोजना, और कुल मिलाकर इसकी जो स्थापित क्षमता है वो करीब 7000 मेगावाट है। इसके अलावा यहाँ पर UP स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के 2 परियोजना यहाँ पे लगाई गई, वो अनपरा और ओबरा।
0: अपने उत्तरार्ध में सोन की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, खूब चौड़ा पाट और गरजता हुंकार भरता तेज प्रवाह। वो नद है ना, सो पुरुष की स्वाभाविक उच्च श्रृंखलता से बार बार अपना मार्ग बदलता रहा है और वर्षा ऋतु में इसकी प्रलयंकारी बाढ़ की स्मृतियां पुराने लोगों के हृदय को अब भी कांपा जाती हैं।
1: भोजपुर जिले के पथार गांव के मूल निवासी देव कुमार मिश्र ने वर्षों सोन तट और समूचे सोन क्षेत्र में बीहड़ यात्राएं कर सोन पर एक अप्रतिम पुस्तक ही रचना

0: डाली है। कुछ स्मृतियां उनके शब्दों में।
1: वराज बनने के पहले तो सोन बहुत प्रलय मचाता था और पानी आता था ऐसे जैसे बिल्कुल दीवार आ रही हो। रोहतास जिले में एक मुहावरा ही है, हिरणवाह, बैल को हमारे बैल को हिरणवाह हो गया है। कुछ उसका अर्थ इसके सिवा और कुछ नहीं है कि बीमारी से आक्रांत पशु उछल कूद करने लगता है, हर काम में अड़ंगा डालने लगता है। हिरण्यवाह नाम है सोन का ही, दूसरा नाम है हिरण्यवाह। बीमारी जो है वो सोन की प्रकृति को उजागर करता है कि जब बाढ़ आती है तो किस तरह सोन का व्यवहार बिल्कुल अनियंत्रित हो जाता है।
2: यह सहज ही है कि आधुनिक युग में विज्ञान के विकास से उपजी शक्ति का प्रयोग इस प्रचंड जलराशि से मैत्री कराने के लिए किया जाता। बिहार के रोहतास जिले में डेहरियान सोन के निकट इंद्रपुरी में है सोन बराज सिंचाई योजना। लगभग 125 वर्ष पुराने इस योजना की नहर प्रणाली की चर्चा करते हुए डेहरी में पदस्थ जल संसाधन विभाग के मुख्य अभियंता मोहम्मद अलाउद्दीन मंसूरी।
3: इस सोन नदी से बिहार क्षेत्र में लगभग 125 साल पहले से सिंचाई की व्यवस्था है, जबकि अंग्रेज़ों ने डेहरी के निकट एक आईनीकट बनाया था और उससे ये पानी लेके नहरों के मार्फत ले जाते थे। इसके बाद जब वो एनीकट बहुत पुराना हो गया तो फिर बिहार सरकार ने एक बराज बनाया वहाँ पुराने एनीकट के लगभग 8 किलोमीटर ऊपर, और वहाँ से फिर ये पुरानी नहरों को जोड़ दिया गया और एक उच्च स्तरीय नहर भी निकाले गए दोनों तरफ ये बराज के। और इससे अब जो है जो ज़िले बन गए हैं उदयपुर, रोहतास और इधर औरंगाबाद और इधर पटना, इन ज़िलों में इससे 5.5 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हम लोग कर रहे हैं।
0: सोन नहर की सिंचाई प्रणाली में उपलब्ध जल के अधिकतम उपयोग, भूगर्भ जल विकास, उत्पादन और बाजार प्रबंध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से बिहार में सोन कमान क्षेत्र विकास एजेंसी के नाम से एक स्वशासी निकाय गठित किया गया।
2: इसका कार्यक्षेत्र पटना, भोजपुर, बक्सर, रोहतास, औरंगाबाद, गया, भभुआ, जहानाबाद और पलामू जिलों में है। इस एजेंसी ने सोन बीज नाम से धान के उन्नत बीज का रिकॉर्ड उत्पादन किया है। वृक्षारोपण, जल संरक्षण और मिट्टी की जांच जैसे महत्वपूर्ण कार्य भी इसने बड़े पैमाने पर हाथ में लिए हैं।
0: इसी नहर प्रणाली के कारण सोन जैसे बिहार की जीवनदायिनी नदी बन गई है। रोहतास जिले के ग्राम पहलेजा के कृषक श्री उदल सिंह कहते हैं,
4: जब से इंद्रपुरी का बांध बंधा है तब से डेहरी ओन सोन से उत्तर और पश्चिम पूरब वाले लोगों को खेती में अच्छा खासा फायदा हुआ है। धान होता है और गेहूँ होता है, नहर आने से फसल ज्यादा होने लगा है।
2: सोन की लहरों से ही एक अन्य रूप में जीवन यापन करते हैं मछुआरे।
5: हमारा नाम सुरेश चौधरी है, रहते हैं इंद्रपुरी में। मछली है, थोड़ा बहुत चलवा पोठिया मिलता है सोन में, रीठा बामी मिलता है यहाँ पर, चलवा बहुत थोड़ा बहुत कम मिलता है। एकरे में बाल बच्चा हमारा जीता है खाता है, कभी ज़्यादा मिलता है कभी कम मिलता है। बस इसी में हम लोग का है कि इसी में जीना है, मरना है हम लोग का।
2: हाल ही में डेहरी आन सोन में सोन नहर पर जल विद्युत परियोजना भी शुरू हो गई है। परियोजना के अधीक्षण अभियंता विद्युत श्री ब्रज किशोर द्विवेदी।
6: यहाँ सोन वेस्टर्न लिंक कैनाल है जो सोन नदी पर है, उसी पर हम लोगों का यह सोन वेस्टर्न हाइड्रोलिटिक प्रोजेक्ट बना है। इसमें 4 इकाइयाँ हैं, प्रत्येक इकाई की क्षमता 1.65 मेगावाट है। यहाँ 3 इकाइयाँ रेदर कमीशन हो चुकी हैं, 4थी इकाई भी करीब करीब तैयार है। सो करीब करीब हमारे चारों यूनिट रेडी हैं। 12 महीना हम लोग इससे, जब भी कनाल में पानी रहेगा तो हम लोग उसमें बिजली पैदा कर सकते हैं और एक इकाई से प्रतिदिन करीब 40,000 यूनिट हम लोग जनरेट करेंगे।
0: विकास के स्वप्न को सींचने वाली सोन की बहुत ही महत्वपूर्ण निर्माणाधीन परियोजना है बाणसागर बहुउद्देशीय अंतर्राज्यीय परियोजना।
2: मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार तीनों राज्यों के लिए आगत समृद्धि के स्वप्न समेटे इस परियोजना के तकनीकी पक्ष के बारे में बता रहे हैं परियोजना के रीवा स्थित मुख्य अभियंता श्री के अंबाजी राव।
7: इस प्रोजेक्ट में एक है कि ये 63 मीटर हाई डैम है मुख्य बात, और इसकी लंबाई 1020 मीटर है और इसकी जो कैपेसिटी है इट इज़ 5.1 मिलियन एकड़ फीट, वो काफ़ी बड़ा है। मध्य प्रदेश में जो चल रहा है वो सबसे बड़ा

कैपेसिटी का प्रोजेक्ट है। 56,000 हेक्टेयर मतलब 560 वर्ग किलोमीटर के एरिया में उसका पूरा पानी फैल जाएगा। ये जो हमारे जो 2 मिलियन एकड़ फीट पानी हम यूज़ कर रहे हैं मध्य प्रदेश का, उसमें 1.48 मिलियन एकड़ फीट हम सिंचाई के लिए यूज़ कर रहे हैं और 0.52 मिलियन एकड़ फीट हम एमपीपी को दे रहे हैं जिससे वो हाइड्रो पावर जनरेट किया कर सकते हैं। 435 मेगावाट

0: और हम आगे कहाँ जाकर क्या प्रगति कर लेंगे, अपने हम बाल बच्चे के लिए भविष्य में क्या उन्नत कर पाएंगे।
1: ऐसी ही उथल पुथल बिहार के गढ़वा पलामू जिले के ग्राम बिजड़ी के श्री रघुनाथ दुसाद के मन में भी है, जिनका गांव सोनपुर निर्माणाधीन कदवन जलाशय परियोजना की डूब में आने वाला है।
2: हम लोग को तो लगता है कोई सा गांव अब तो नहीं मिलेगा, हम लोग को तो अफसोस हो ही रहा है। हम लोग को सोन नदी से तो बहुत फायदा है, क्योंकि सोन की ढाब से हम लोग पैदे जितना कमा रहे हैं जमीन से वो भी फायदा है।
3: ऐसे में शायद समाधान एक ही है, मानवीय नियति के प्रति संवेदनशील प्रशासकीय नीतियां और उन पर ईमानदार अमल। बाणसागर परियोजना के रीवा में पदस्थ भू अर्जन और पुनर्वास आयुक्त श्री प्रकाश चंद्र के स्वर में गुत्थियों को सुलझाने का विश्वास और धीरज है।
4: जो परिवार अपने सामाजिक परिवेश से विस्थापित होंगे, उन्हें बसाने के लिए नए आदर्श ग्रामों की बसाहट का काम पूरा किया जाएगा। आदर्श ग्रामों से तात्पर्य यह है कि वहाँ हम किसी भी नागरिक सुविधाओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे बिजली, सड़कें, पानी, पेयजल और अन्य शिक्षा से संबंधित बातें, इनको हम वहाँ तुरंत निर्मित करेंगे, इनकी पूर्ण व्यवस्था करेंगे। दूसरी बात, शासन ने इन आदर्श ग्रामों में ये रखी है कि प्रत्येक ग्राम में एक विकसित भूखंड जो 50x90 वर्ग फीट का होगा, यह प्रत्येक विस्थापित को दिया जाएगा, जो निःशुल्क दिया जाएगा।
1: औद्योगिक जल प्रदूषण हमारे दौर की एक भीषण समस्या है, सोन भी इससे अछूता नहीं।
3: शहडोल के शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र के व्याख्याता डॉक्टर विनय सिंह कहते हैं,
5: मुख्य रूप से जो प्रदूषण के प्रभाव पानी में आते हैं, उस प्रभाव के फलस्वरूप पानी का पीएच एसिडिक हो जाता है, पानी टर्बिड हो जाता है और पानी का ऑक्सीजन कंटेंट जो है वो काफ़ी कम हो जाता है।
1: सोनभद्र ज़िले में ओबरा में रह रहे पत्रकार और पर्यावरण चैतन्य संस्था के महासचिव श्री राहुल श्रीवास्तव,
6: हर महीने करीब 50,000 टन राख जो है सोन नदी में चली जाती है। उस राख के बहने से हम सोन जो है चौपन से पटना तक एकदम प्रदूषित हो गई है।
3: प्रदूषण की समस्या को आधुनिक उपभोगवादी जीवन दृष्टि का दोष मानते हैं रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति और पर्यावरण जीव शास्त्री प्रोफेसर J.S. राठौर।
7: ये जो अम्लाई क्षेत्र है, जो मिल वाले हैं, वो पूरे नदी के ऊपर एक मिट्टी का बांध बना देते हैं। गर्मी के दिनों में पानी कम होता है और मिल को पानी की आवश्यकता ज़्यादा रहती है, तो इन दिनों में तो स्थिति ऐसी हो जाती है कि जैसे मान लीजिए पूरी नदी ही मिल के अंदर पहले चली गई और फिर नीचे जो है जो पानी फेंका गया वो पूरा प्रदूषित पानी ही फेंका गया। मैं तो ये मानता हूँ कि जो पर्यावरण है वो मूल रूप से जीवन शैली और जीवन दृष्टि का प्रश्न है। आधुनिकीकरण ने जो नदियों को जो हम माता और एक दिव्य रूप में देखते थे, वो दृष्टि के ऊपर कोहरा एक तरीके से आधुनिक दृष्टि ने किया है और यही कारण है कि हम उनकी पवित्रता को बनाने में उतना उत्साह नहीं दिखा पाते जितना कि हमें दिखाना चाहिए।
3: शायद हमें अब पुनराविष्कार करना होगा अपनी मूल विश्व दृष्टि का, जिसमें जीवन और नदी का अद्भुत तादात्म्य है। नदी को जैसे जीवन के प्रवाह का ही प्रतीक माना गया है,
1: उसमें सभी कुछ तो है, निरंतरता, अखंडता, दुर्निवार संकल्पशीलता और अविराम गति। आधुनिक चेतना और उपकरणों से संबद्ध होकर इसकी दुर्दमनीय पौरुषे शक्ति से ऐसी स्थायी मैत्री हम कर पावे
3: कि इसके अंचल में जीवन के उल्लास की लय में बंधे पांव थिरकते रहे अनंत तक। जैसा अनंत इसका ओज है, जैसी अविराम इसकी यात्रा है, अपनी ऊर्जस्विता में हमारी अतीत, वर्तमान और भविष्य को स्पंदित करती हुई।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना।

0: भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन।
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारत

0: श्रोताओं, शिव महिमा के पिछले प्रकरण में आपने कामदेव और संध्या के जन्म का विवरण सुना। कामदेव और रति का विवाह सृष्टि के सनातन कार्य का नियामक और भावी समाज के लिए विवाह प्रथा का द्योतक बन गया। सकाम भाव से पीड़ित हो ब्रह्मा जी की मानस पुत्री संध्या ने देहाहुति दे दी, परंतु शिव वरदान से वे प्रातः संध्या और साय संध्या के रूप में अजर अमर हो गई। प्रभु आशीर्वाद से ही वो अपने अगले जन्म में महर्षि वशिष्ठ की विदुषी पत्नी अरुंधति बनी। अब प्रस्तुत है इसके आगे की शिवलीला। नाट्य रूपांतरकार और निर्देशक हैं अनिल सूद।
1: मुनि शौनक जी, इस प्रसंग के बाद प्रजापति दक्षराज ने अपने मानस से अनेक जीवों की रचना की।
2: महाभाग सूद जी, फिर तो समस्त सृष्टि इन जीवों तथा इनकी संतानों से व्याप्त हो गई होगी।
1: नहीं शौनक जी, जीव उत्पन्न तो हुए परंतु उनकी संख्या बड़ी नहीं। चिंतित दक्षराज परमपिता के पास उपाय पूछने जा पहुंचे।
3: पुत्र दक्ष, तुम प्रजापति पंचजन की पुत्री आसिन की अर्थात वीरणी से विवाह करो। तुम दोनों के दैहिक संबंध से सहस्रों जीव उत्पन्न होंगे।
4: परंतु पितामह, इससे प्रजा की अविरल उत्पत्ति कैसे संभव होगी?
3: ये सभी मानव दैहिक संबंध के माध्यम से ही भावी पीढ़ियों को जन्म देंगे। यही तुम्हारे तथा श्रीहरि के लिए प्रजा का विस्तार करेंगे।
4: जो आज्ञा परमपिता।
2: उत्तम, अति उत्तम सूत जी। तो इस प्रकार त्रिकालदर्शी ब्रह्मा ने मानव जीवन का सूत्रपात किया।
1: हाँ शौनक जी, दक्ष पत्नी वीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए, सभी धर्मपरायण तथा आज्ञाकारी।

0: गई थी। पुत्रों के बड़े होने पर प्रजापति दक्ष ने पुत्रों को आदेश दिया, जाओ सिंध नद तथा समुद्र के संगम पर स्थित नारायण सर तीर्थ पर तपस्या करो, प्रजा निर्माण का कार्य आरंभ करो।
1: फिर क्या हुआ ऋषि राजसूत जी?
0: दक्ष पुत्रों की तपस्या ने ब्रह्म ऋषि नारद को सोच में डाल दिया।
2: नारायण नारायण नारायण।
3: आइए महामुने नारद, विराजिए।
2: धन्यवाद श्री हरि।
3: कहिए, सब कुशल मंगल तो है?
2: नारायण नारायण। भगवान के होते हुए क्या अकुशल और अमंगल हो सकता है?
3: तो फिर आपके ललाट पर चिंता की ये रेखाएं क्यों?
2: चिंता नहीं महाप्रभु, जिज्ञासा, मात्र जिज्ञासा।
3: जिज्ञासा? कैसी जिज्ञासा मुने नारद?
2: महाप्रभु, क्या आपको ज्ञात है कि ब्रह्मांड में क्या घट रहा है?
3: ऋषिवर, आप तो दसों दिशाओं में भ्रमण करते रहते हैं, फिर भला कौन सी घटना विशेष आपको हमारे पास खींच लाई है?
2: प्रभो, दक्ष पुत्र मानव सृष्टि की प्रक्रिया आरंभ करने जा रहे हैं।
3: ये तो हर्ष का विषय है मुने नारद। हमारा तो जन्म ही सृष्टि संचालन के लिए हुआ है, अब उसमें मानवी तत्व भी आ जुड़ेगा।
2: ये तो सत्य है श्री हरि, परंतु
3: परंतु परंतु क्या मुने नारद?
2: प्रभु, क्या संख्या के आधार पर मानव हम पर हावी नहीं हो जाएगा?
3: मुने नारद, हम 64 करोड़ हैं।
2: नारायण नारायण, क्षमा करें प्रभु, अकेली पृथ्वी ही इससे कहीं अधिक मानवों को आश्रय दे सकती है।
3: हाँ? तो फिर क्या किया जाए मुने नारद?
2: नारायण नारायण, महाप्रभु आपके समक्ष भला मैं तुच्छ क्या कहूं, मैं तो सेवक हूं, आप मुझे आदेश दें।
3: तो सुनो नारद,
0: महाज्ञानी शौनक जी, भगवान विष्णु के कहने पर नारद दक्ष के सहस्रों पुत्रों के पास गए तथा उन्हें बहला फुसला कर तपस्या से विरक्त कर दिया। दक्ष पुत्र पृथ्वी का अंत ढूंढने निकल पड़े। ये एक ऐसी यात्रा थी जिसका कोई अंत ना था।
1: ऋषिवर सूत जी, दक्ष तो अत्यंत दुखी हुए होंगे।
0: हां शौनक जी, पुत्र वियोग से संतप्त दक्ष परम पिता ब्रह्मा के पास पहुंचे। उनकी व्यथा सुन ब्रह्मा जी ने उन्हें सांत्वना दी, धीरज रखते हुए प्रजा निर्माण का कार्य जारी रखने का आदेश दिया। दक्ष पत्नी ने पुनः 1,000 पुत्रों को जन्म दिया। नारद मुनि एक बार फिर दक्ष पुत्रों को अनजान तपस्या मार्ग पर भेजने को उद्यत हुए। नारद दक्ष पुत्रों को भ्रमित कर ही रहे थे कि दक्ष वहां आ पहुंचे।
4: ठहरिए मुनि नारद, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों मेरे पुत्र को भटका रहे हैं?
2: नारायण नारायण, दक्षराज भटका नहीं रहा हूं मैं तो इन्हें पिता की आज्ञा पालन का सही मार्ग बता रहा हूं।
4: आपने पहले भी मेरे पुत्रों को ऋषि ऋण, देव ऋण और पितृ ऋण से मुक्त हुए बिना सन्यास का मार्ग दिखाया है। आप तो परम ज्ञानी हैं, क्या आप नहीं जानते कि इन ऋणों से मुक्त हुए बिना मनुष्य अधोगति को प्राप्त होता है?
2: प्रजापति दक्ष, मेरे बताए मार्ग पर चलकर तुम्हारे पुत्र सांसारिक ज्ञान प्राप्त करेंगे।
4: तूने मेरे पुत्रों को ज्ञान का मार्ग नहीं भटकाव का मार्ग दिखाया है, इसलिए मैं दक्षराज तुझे श्राप देता हूं कि तू भी जीवन भर तीनों लोकों में भटकता ही रहेगा, भटकता ही रहेगा।

0: तेरा कहीं स्थाई वास नहीं होगा।
1: शांत शांत हो जाओ पुत्र दक्ष, शांत। ये तुमने क्या कर डाला? अपने मानस भ्राता को ये कैसा श्राप दे दिया? ऐसा क्रोध तुम्हें शोभा नहीं देता पुत्र।
0: परमपिता, और जो इन्होंने किया वो शोभा देता है? अपनी अपनी कुटिल नीति।
1: कुटिल नीति नहीं दक्ष, कुटिल नीति नहीं, ये काल की नियति है, दैवी विधान है, और इसका निर्धारण स्वयं देवाधिदेव करते हैं। पुत्र, ये तो शिवलीला है।
2: शिवलीला? तो क्या सब उन्हीं की इच्छा से हो रहा है?
1: हाँ पुत्र, और जो वे करते हैं वो सदैव मंगलकारी ही होता है। पुत्र, वियोग का शोक मत करो, प्रभु का स्मरण करो, प्रजा विस्तार का अपना कार्य जारी रखो।
2: जैसी आपकी आज्ञा विधात। जाओ पुत्रों, जाओ, जैसा मुनि नारद ने कहा है वैसा ही करो।
3: जैसी आज्ञा।
4: ब्राह्मण, फिर कालांतर में दक्ष के यहां 60 सुंदर पुत्रियों का जन्म हुआ। बड़ी होने पर दक्ष ने अपनी 10 कन्याएं धर्म को, 13 कश्यप मुनि को, 27 चंद्रमा को, 4 कन्याएं तार्क्ष्य तथा 2-2 कन्याएं भूत, अंगिरा और कृषश्व को ब्याह दी।
2: सूत जी, दक्ष की 61वीं पुत्री का क्या हुआ?
4: शिव महिमा का ये प्रसंग, अर्थात सती प्रसंग, अति महत्वपूर्ण, रोचक एवं विस्तृत है।
2: तो सुनाइए ना सती कथा।
4: अवश्य सुनना चाहिए। एक बार शिव माया के कारण परमपिता ब्रह्मा के मन में एक विचित्र विचार ने जन्म लिया। वे अपने को विष्णु तथा रुद्र से ऊंचा मानने लगे। इस पर भगवान शंकर ने उनका उपहास किया। उन्हें समझाने का प्रयास किया कि तीनों एक समान हैं, तीनों ही उनका अंश हैं।
2: और ये सत्य भी था सूत जी।
4: परंतु ब्रह्मा तो स्वयं शिवलीला से मोहित थे। वे बहुत क्षुब्ध हुए तथा रुद्रदेव से ईर्ष्या करने लगे। उनके हृदय में रुद्रदेव की तपस्या भंग करने की भावना घर कर गई।
2: रुद्र तपस्या भंग करने की भावना? फिर परमपिता ने क्या किया?
4: उन्होंने कामदेव और दक्ष को बुलाकर आदेश दिया कि वे किसी भी प्रकार रुद्र का मन मोहें, उनका ध्यान किसी कमनीय स्त्री के पाणिग्रहण की ओर आकृष्ट करें।
2: तो क्या कामदेव को या दक्ष को इसमें सफलता मिली?
4: नहीं शौनक जी, अनेक प्रयासों के उपरांत भी महातपस्वी रुद्रदेव अपनी तपस्या पर अडिग रहे। ब्रह्मा दक्ष और कामदेव के साथ अगली नीति के विषय में सोच ही रहे थे कि नारद पृथ्वी का भ्रमण कर वहां आ पहुंचे।
5: नारायण नारायण। प्रणाम परमपिता।
1: प्रणाम पुत्र नारद। विराजी।
6: प्रणाम मुनि श्रेष्ठ।
5: प्रणाम। ओहो, दक्षराज और कामदेव भी उपस्थित हैं। फिर तो अवश्य ही किसी गंभीर विषय पर वार्तालाप हो रहा होगा।
1: हाँ पुत्र नारद, विषय तो गंभीर ही है। हम प्रयासरत हैं कि किसी प्रकार रुद्रदेव अपनी तपस्या छोड़ वैवाहिक बंधन में बंध जाएं।
5: परमपिता, आप तो सदा ही रुद्र रूपी शिव का मंगल सोचते हैं। वैसे भी प्रभु, रुद्रदेव की इस घनघोर तपस्या से आपके और श्री हरि के वर्चस्व को हानि पहुंच रही है।
6: वो कैसे मुनि नारद?
5: दक्षराज, आप प्रजापति हैं, परंतु आपकी प्रजा आपके पिता की अपेक्षा भभूतधारी

0: वो इसलिए नारद मुनि कि काम, क्रोध, लोभ और मोह से विलग रुद्रदेव सबके लिए आदर्श हैं।
1: नारायण नारायण, कामदेव, क्या परमपिता और श्रीहरि हमारे आपके सबके लिए आदर्श नहीं है?
0: अब
1: विशेषकर मानव जाति के लिए, जिसके यही कर्ता और भर्ता हैं।
2: पुत्र नारद, प्रश्न देवत्व के वर्चस्व का नहीं है, प्रश्न है हमारे द्वारा निर्मित जीवन के सुचारू संचालन का, उसमें रुद्रदेव के सक्रिय योगदान का। भविष्य को दृष्टि में रखते हुए रुद्रदेव का विवाह अति आवश्यक हो जाता है।
1: नारायण नारायण, तो फिर प्रभु विलंब कैसा? आप तो रचयिता हैं, रुद्रदेव के लिए किसी सुयोग्य नारी की रचना कर डालिए।
2: नहीं पुत्र नारद, उस नारी का मेरी मानस पुत्री नहीं, मानवी होना आवश्यक है। उसमें रुद्र बीज ग्रहण करने की क्षमता होना आवश्यक है।
3: कौन हो सकती है वो दिव्य मानवी?
2: हे श्रीहरि, आप ही कुछ उपाय करें।
4: प्रणाम भगवान विष्णुदेवा।
3: कहिए सृष्टिकर्ता, कैसे स्मरण किया?
2: आप तो अंतर्यामी हैं लक्ष्मीपति, आपसे हमारा कौन सा उद्देश्य छिपा है?
3: विधेय, क्या भूल गए हमें और आपको उत्पन्न करने के पश्चात देवाधिदेव ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि शिव की तरह देवी शिवा के भी तीन रूप होंगे, लक्ष्मी, सरस्वती और सती। लक्ष्मी और देवी सरस्वती तो हमें प्राप्त हो गई हैं, अब रुद्रदेव को सती की प्राप्ति होना शेष है।
2: परंतु विष्णु हरि, निर्विकार योग परायण प्रभो किस स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना स्वीकार करेंगे, वो भी मानवी रूप में?
3: इसके लिए स्वयं देवी शिवा को मानवी रूप में अवतार लेना होगा। शिवा ही शिव की अर्धांगनी बन सकती हैं विधात। ब्रह्मपुत्र दक्ष,
5: आज्ञा श्री हरि।
3: पुत्र, तुम महादेवी शिवा की आराधना करके उन्हें प्रसन्न करो, उनसे वरदान प्राप्त करो कि वे तुम्हारी पुत्री के रूप में अवतरित हों। मात्र वे ही रुद्रदेव की पत्नी होने में सक्षम हैं।
5: जो आज्ञा महाप्रभु, जो आज्ञा।
6: प्रसीद भगवताद्य, प्रसीद शिव रूपिणी, प्रसीद भक्त वरदे, जगन्माये नमोस्तुते। प्रसीद भगवताद्य, प्रसीद शिव रूपिणी,

0: रूपिणी प्रसीद जगन्माए नमोस्तुते। प्रसीद शिवरूपिणी प्रसीद जगन्माए प्रसीद।
1: दक्ष, तुम्हारी इस 3,000 वर्षों की तपस्या से मैं प्रसन्न हुई, इच्छित वर मांगो।
2: माते, परम आराध्य शिव ने तो रुद्र के रूप में जन्म ले लिया है, परंतु आपका कोई अवतार नहीं है। ऐसे में रुद्र की अर्धांगनी कौन होंगी?
1: हे ब्रह्मा पुत्र दक्ष, इसके लिए मुझे क्या करना होगा?
2: महादेवी, मेरी विनम्र प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें।
1: तथास्तु, मैं शीघ्र ही वीरणी के गर्भ से जन्म लूंगी।
2: मैं कृतार्थ हुआ माते।
3: हां शौनक जी, उधर देवी सती शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगी। बाल अवस्था से ही उनका हृदय शिव भक्ति में लीन रहने लगा। युवावस्था आते आते उनकी शिव आराधना महादेव को पति के रूप में पाने की

अभिलाषा में परिवर्तित हो गई। फिर एक दिन

0: परमपिता, विष्णु जी, समस्त देवगण एक साथ यहाँ आए हैं। मैं धन्य हुई।
1: पुत्री सती, तुम्हारी शिव निष्ठा से हम सब बहुत प्रभावित हुए हैं।
2: परंतु पुत्री, रुद्र रूपी शिव को पाने के लिए तुम्हें और कठोर तपस्या करनी होगी।
0: आज्ञा करें प्रभु श्री हरि, मुझे किस वन, किस पर्वत पर जाना होगा?
2: नहीं सती, तुम घर पर ही रहकर 12 माह का कठोर नंदा व्रत करो। एकाग्र चित्त होकर रुद्र देव का ध्यान करो।
1: महादेव तुम्हें अवश्य प्राप्त होंगे। जाओ पुत्री, आज आश्विन मास की पहली नंदा तिथि प्रतिपदा है। आज के इस शुभ दिन से ही अपना व्रत आरंभ करो।
0: जैसी आज्ञा ब्रह्मदेव।
3: श्री हरि, विधे, आप सब एक साथ कैलाश पर?
2: हे दुर्गा पते, हम भविष्य को दृष्टि में रखकर आपसे एक अनुरोध करने आए हैं।
3: निर्भय होकर अपने मन की बात कहिए। हरे,
2: सृष्टि कर्ता के रूप में ब्रह्मा, संचालक के रूप में मैं तथा संहारक के रूप में आप रुद्रदेव एक दूसरे के पूरक हैं।
3: लक्ष्मीपते, आपका कथन सत्य है।
1: मैं और श्री विष्णु अपने निर्धारित धर्म को निभा रहे हैं, परंतु देव, संहारक के रूप में आपका कर्म अभी शेष है।
3: तो पूरा करने के लिए हमें क्या करना होगा ब्रह्मदेव?
1: देव, आपको अपनी तपस्या त्याग कर विवाह करना होगा।
3: विवाह? और हम? हे ब्राह्मण, मैं संसार से विरक्त योगी हूँ, भोगों से दूर रहता हूँ, विवाह को बंधन मानता हूँ। और फिर विधात, मेरे संघार कर्म और विवाह के बीच क्या संबंध है?
1: हे करुणा सागर, आने वाले समय में कुछ असुर मेरे हाथों मारे जाएंगे, कुछ विष्णु जी के और कुछ स्वयं आपके हाथों काल को प्राप्त होंगे। परंतु देवाधिदेव, कुछ असुरों के विनाश के लिए आपका विवाह करना तथा पुत्र उत्पन्न करना अति आवश्यक है।
3: आप त्रिकाल दृष्टा हैं, आप कोई अनुचित अनुरोध नहीं करेंगे। वैसे भी श्री हरि और ब्रह्मदेव, आप दोनों ही मुझे प्रिय हैं, हम अवश्य आपकी बात का मान रखेंगे। परंतु?
2: परंतु क्या रुद्रदेव?
3: ऐसी कौन सी नारी होगी जो मेरा तेज सह सके, मेरे कर्म के अनुकूल चले, जो योगिनी हो तथा इच्छा अनुसार रूप धारण कर सके, मेरे ध्यान और मेरी तपस्या में विघ्न ना डाले, क्योंकि ऐसा करते ही उसका अंत हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है, उस नारी का मुझ में संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। अविश्वास करते ही मैं उसे त्याग दूंगा।
2: महेश्वर, देवी शिवा स्वयं दक्ष पुत्री के रूप में अवतरित हुई हैं। वे आपको पति रूप में पाने के लिए कठोर व्रत कर रही हैं।
1: वे आपकी भार्या के रूप में सर्वथा उपयुक्त है। देवाधिदेव, हमारा आपसे अनुरोध है कि आप सती का पाणिग्रहण करें।
3: आप

0: सबकी मनोकामना पूर्ण होगी।
1: देवाधिदेव जगतपते आप, मैं धन्य हुई प्रभु, मैं धन्य हुई।
0: दक्षनंदिनी, तुम्हारे व्रत से हम प्रसन्न हैं। कोई वर मांगो देवी, मांगो कोई वर मांगो। दक्षनंदिनी मौन न रहो, हृदय की अभिलाषा व्यक्त करो, बोलो देवी।
1: कुछ कुछ मांगो तो आप दे पाएंगे?
0: हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है, मांग कर तो देखो।
1: आप हाँ। मेरे आप मुझे मुझे आप
0: मैं तुम्हें अपनी भार्या स्वीकार करता हूँ।
1: देव, मैं पूर्ण हुई। देव, मैं पूर्ण हुई।
2: आहा, कितना मंगल और मधुर वातावरण है।
3: नारायण नारायण,
2: रुद्रदेव और देवी सती की जोड़ी कितनी दिव्य प्रतीत हो रही है।
4: स्वयं परम पिता ब्राह्मण बन विवाह संपन्न करवा रहे हैं।
2: इस अलौकिक रुद्र सती विवाह देखने को पूरा देव समुदाय उमड़ पड़ा है।
4: मंगल वाद्यों की ध्वनि से सभी दिशाएं गूंज रही हैं।
2: अरे अरे सुनो तो, पितामह कुछ कह रहे हैं।
5: हे रुद्रदेव, हे देवी सती, विवाह संपन्न हुआ।
2: हम आपके मंगलमय दाम्पत्य जीवन की कामना करते हैं।
0: हे ब्रह्मा जी, आपने ये विवाह संपन्न करवाया, इस कारण आप मेरे आचार्य हुए। बताइए आपको क्या दक्षिणा दूं?
5: देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपने इसी रूप में इस वेदी पर विराजमान रहें। यहां आपके दर्शन प्राप्त कर मनुष्यों के समस्त पाप धुल जाएंगे, उन्हें विपुल पुण्य की प्राप्ति होगी, सभी रोगों का नाश होगा।
0: तथास्तु।
6: शौनक जी, आनंद में सहस्रों वर्ष बीत गए, परंतु विधि का विधान तो कुछ और ही था। एक बार ऐसी घटना घट गई कि रुद्र ने अपनी परम प्रिय पत्नी सती का त्याग कर दिया।
2: अपनी पत्नी का त्याग?
6: देवी सती रुद्रदेव के किसी कथन का अविश्वास कर बैठी। रुद्रदेव ने अपनी प्रतिज्ञावश तुरंत देवी सती का मानसिक त्याग कर दिया।
2: ये तो बड़ी दुख भरी घटना घटी मुनि श्रेष्ठ। तो क्या इसके पश्चात दोनों अलग अलग रहने लगे?
6: नहीं सूत जी, यही तो शिवलीला की महत्ता है। रुद्र ने सती का केवल मानसिक त्याग किया था, पति पत्नी के रूप में दोनों साथ रहते थे, दोनों के बीच प्रेम और आदर भाव यथावत बना रहा। तभी तो रुद्र सती विवाह एक आदर्श माना जाता है। शौनक जी, रुद्र और सती तो सदैव साथ ही रहते हैं, उनमें वियोग असंभव है। उनकी अपनी इच्छा से ही उनमें लीला वियोग हो सकता है।
7: श्रोताओं, आज का प्रकरण हमने शिव पुराण के रुद्र संहिता द्वितीय खंड के 11वें अध्याय से 25वें अध्याय तक से लिया था। अगले अंक में दक्ष कथा को आगे बढ़ाते हुए दक्ष यज्ञ और सतीदाह का प्रसंग प्रस्तुत किया जाएगा।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग। सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
1: कोई बोले राम राम।
0: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आप कै दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आप कै हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

रामावलिं इमां यस्तु दुर्गाया मम मानवाः पठे सर्वभयान् मुक्तः भविष्यति न संशयः। अर्थात कठिन के दुष्प्राप्य ज्ञानना स्वरूपे रहेला दुर्गम ध्यानथी प्रकाशित थनारा जमनी माया मोह अकड़छे ए दुर्गम मार्गमा रहेला दुष्प्राप्य अर्थना स्वरूपवाळा दुर्गा देवी ने अमे प्रणाम करीश। तोज साथे दुर्गम दैत्यना संहारक विकट आयुधन धारण करनारा अविचिंत्य अंगोवाळा दुर्गम मार्गे गति करनारा होवाथी दुर्गम्य मुश्केलीथी प्राप्त थनारा कम नसीबवाळा माणसोना रक्षक स्वामिनी दुर्गा देवी खरेखर परमेश्वरी छे। ए माता दुर्गम्य छे, दुष्टो माटे भयंकर छे, तमनो क्रोध भयानक होय छे। दुष्प्राप्य मुश्किलियोने टाळनारा दुर्गा माता वंदन करीए छे। जे मनुष्य दुर्गाना आ नामोनो पाठ करे छे ते बेशक बधाज प्रकारना भयमांथी मुक्त थाय छे। पठे सर्व भयान् मुक्ताः भविष्यति।

0: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। श्री कृष्ण जन्मस्थान एवं मंदिर श्री द्वारिकाधीश के साथ पूरे ब्रज में श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व भाव एवं भक्ति के साथ शांति एवं सुचारू रूप से मनाया जा सके, इसके लिए शासन प्रशासन की तैयारियों पर जानकारी देते हुए जिलाधिकारी मथुरा श्री चंद्र प्रकाश सिंह।
1: भगवान जी के इस जन्मभूमि मथुरा में 5253वां भगवान जी का जन्मदिवस 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि में बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाएगा। इसी दिन श्री ठाकुर बांके बिहारी जी के मंदिर में मंगला आरती 1:55 पर की जाएगी और द्वारिकाधीश मंदिर में भी बहुत ही भव्यता और दिव्यता से भगवान जी का जन्मदिवस मनाया जाएगा। आप स्वयं यहाँ के साक्षी बनिए, पूरा मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना बलदेव गोकुल और नंदगांव को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया संवारा गया है और जो भगवान जी की लीलाओं की झांकियां हैं उनको हम लोगों ने वॉल पेंटिंग के माध्यम से अन्य माध्यमों से जगह जगह सजाया है। 25 से अधिक स्थानों पर कल्चरल प्रोग्राम हो रहे हैं, पूरे शहर की सजावट देखने लायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं पूरे कार्यक्रम की समीक्षा करके इसको बहुत ही भव्य और दिव्य तरीके से मनाने के निर्देश दिए हैं। लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के यहाँ आने का अनुमान है। मैं सभी अपने श्रद्धालुओं का खुले दिल से ब्रजवासियों की तरफ से अपनी तरफ से पूरी टीम की तरफ से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। उनसे अनुरोध है वो अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। हम लोगों ने तय किया है कि भगवान जी का जन्मदिन प्लास्टिक फ्री मनाएंगे, तो श्रद्धालुओं से भी अनुरोध है कि वो पॉलीथीन का सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग ना करें। उनके रुकने के लिए जहाँ वो रुकें, होटल हो धर्मशाला हो या हमारे शेल्टर्स होम भी तैयार किए गए हैं, और वहाँ भी एक जिम्मेदारी का परिचय दें। रूट डाइवर्जन किया गया है उसका भी ध्यान रखें। पूरे शहर को छोटे छोटे सेक्टर्स में डिवाइड करके, जोन में डिवाइड करके लैंड ऑर्डर की ड्यूटी लगी हुई है, कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं। हम लोगों ने पूरा प्रयास किया है कि जो हमारे श्रद्धालु आवें वो ब्रज की जो रज है उसमें आनंद लें, भगवान जी का दर्शन करें। जन्माष्टमी पे जो भी हमारे सारे मंदिर हैं, प्रमुख देवालय हैं, उनमें भी जाएं, लेकिन गरिमा का ध्यान रखें और अफवाहों से बचें। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो तत्काल प्रशासन या प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराएं और हम आपकी सेवा के

0: लगातार कृत संकल्पित हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि भगवान श्री कृष्ण जी का जो संदेश जो हम लोगों के जीवन में हम लोगों की रगों में रचा बसा है, जो प्रगति का द्योतक है, जो ज्ञान का द्योतक है, कर्म का द्योतक है, उस पर आगे चलते हुए न केवल अपना जीवन सफल बनाएंगे, अपनों का जीवन सफल बनाएंगे, मानवता को आगे बढ़ाएंगे और स्वयं प्रसन्न रहेंगे और दूसरों को भी प्रसन्न होने का मौका देंगे। मैं पुनः जन्माष्टमी की अपने सभी साथियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ, पूरे मथुरावासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ और मैं अनुरोध करता हूँ कि ब्रज जरूर आएं, ब्रज आपका स्वागत करने के लिए आतुर है।
1: इस अवसर पर मथुरा ही नहीं पूरे ब्रज की विरासत के संरक्षण को समर्पित संस्था ब्रज तीर्थ विकास परिषद उत्तर प्रदेश की सचिव IAS लक्ष्मी नागप्पन ने बताया कि इस वर्ष संस्था द्वारा श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व को सांस्कृतिक रूप से मनाए जाने पर विशेष तैयारियां की गई हैं।
2: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पूरे हर्ष और उल्लास से पूरे दुनिया में मनाया जाता है। इसी के मानते जनपद मथुरा में भी 2 तारीख से 4 तारीख तक विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा। पूरे जनपद में हर जगह पे सजावट कराया गया है और लाइटिंग की व्यवस्था कराई गई है, हॉट एयर बलून्स कराया गया है। 3 और 4 तारीख को पूरे जनपद में 21 अलग अलग जगहों पे जो हमारे जनपद के स्थानीय कलाकार हैं उनकी कला को भी आगे बढ़ाते हुए ये 21 जगहों पर उनके द्वारा भी प्रस्तुतिकरण कराया जाएगा। 3 तारीख को और 4 तारीख को एक शोभा यात्रा भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं जिला प्रशासन को साथ में लेते हुए ये कराया जाता है। और ये जो शोभा यात्रा है ये श्री कृष्ण जन्म स्थान के गेट नंबर 3 से शुरू कराया जाता है। इसके अलावा 4 तारीख के रात को 9 से 10 बजे के बीच में पहली बार एक भव्य तरीके से एक ड्रोन शो का भी व्यवस्था कराया गया है। इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी का भी आगमन है 3 तारीख को श्री हरिदास ऑडिटोरियम प्रेक्षागार जो वृंदावन में ब्रज तीर्थ विकास परिषद द्वारा जो निर्माण कराया गया है उसका शुभारंभ और लोकार्पण है। और उस दिन भी 1051 करोड़ का विभिन्न जो लोकार्पण और शिलान्यास का एक कार्यक्रम भी है। तो इस तरीके से पूरे जनपद में 2, 3 और 4 तारीख को भव्य रूप से ये उत्सव और उल्लास से मनाया जाएगा। आप सभी लोगों से और श्रद्धालुओं से भी निवेदन है कि आप लोग जनपद मथुरा आएं और इस बार की जन्मोत्सव ब्रज क्षेत्र में ही हमारे साथ ही मनाएं।
1: इस आयोजन में जब लाखों श्रद्धालु पधार रहे हैं ऐसे में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं को लेकर आप हैं मथुरा के मुख्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राधा वल्लभ।
3: श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोगों के यहाँ जो भी हेल्थ डिपार्टमेंट से सारे प्रोग्राम किए जाते हैं, 4 जो हमारे यहाँ पे मुख्य है जो कृष्ण जन्मभूमि है वहाँ पे हमारे यहाँ सारी हेल्थ टीम की व्यवस्था रहती है। बरसाना मंदिर पे सब व्यवस्था रहती है, दाऊजी महाराज पे भी अच्छी खासी व्यवस्था रहती है और इसके अतिरिक्त बांके बिहारी मंदिर पर भी हमारी पूरी टीम्स की लगभग हमारी 20 टीम्स कार्य करती हैं इसमें, जहाँ पे हमारे डॉक्टर्स, स्टाफ नर्सेज, वार्ड बॉय और अन्य स्टाफ वहाँ पे है रहता और देख रेख में उनके प्रत्येक जगह पे हमारी टीम्स रहती है।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पावन पर्व पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर आयोजित होने वाले विविध कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संस्थान के सचिव कपिल शर्मा।
4: भगवान श्री कृष्ण की पवित्र जन्मभूमि पर आयोजित होने वाले ऐसे विशिष्ट जन्मोत्सव में सम्मिलित होने के लिए 33 कोटि देवता देव देवादिदेव और महादेव भी स्वयं उपस्थित रहते हैं, ऐसी शास्त्र और संतों की मान्यता है। इस वर्ष भगवान ठाकुर श्री केशव देव भगवान श्री कृष्ण पंचरत्नी पोशाक को धारण करके भक्तों को दर्शन देंगे। समुद्र मंथन से प्राप्त 14 रत्नों में से 5 रत्न भगवान श्री कृष्ण की इस पोशाक पर उकेरे गए हैं, उत्कीर्ण किए गए हैं। भगवान कलहंस पुष्प बंगले में विराजमान होंगे। भगवती माँ गायत्री माँ सरस्वती के वाहन राजहंस कलहंस

0: हंस के भाव को हृदयंगम रखते हुए इस वर्ष कलहंस बंगले के स्वरूप में श्री ठाकुर जी के पुष्प बंगले को सजाया गया है। ठाकुर श्री केशव देव भगवान श्री कृष्ण का यह 5253वां जन्म महोत्सव बड़ा विशिष्ट है। इस वर्ष श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान का प्रयास है कि भगवान के गर्भगृह जिसको कंस के कारागार से लोग जानते हैं, भक्त जानते हैं, वहां से भी भगवान के जन्म महाभिषेक के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हो। इसके लिए संस्थान सभी आवश्यक उपाय कर रहा है और ठाकुर श्री केशवदेव की कृपा से इस वर्ष श्रद्धालु जन अपने मोबाइल पर, अपने टीवी पर भी भगवान के पुण्य पवित्र गर्भगृह में आयोजित होने वाले इस महोत्सव के दर्शन का आनंद ले पाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास है।
1: श्री जी बाबा आश्रम के व्यवस्थापक श्री रविकांत जी ने इस अवसर पर बताया,
2: भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव जो उत्तर प्रदेश के इस मथुरा नगरी में इस ब्रज में, क्योंकि यहीं ये पैदा हुए, जो उत्सव का हमारा 5253वां जन्म उत्सव ब्रज में, इस मथुरा में, इस नगरी में 2 तारीख से शुरू होकर 4 तारीख तक ये चलेगा। और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, भगवान कृष्ण से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, जितने भी हमारे ब्रज के ही नहीं बल्कि हमारे प्रदेश के नहीं बल्कि देश के सभी लोगों पर आपका आशीर्वाद, जैसा आपका नाम है ऐसे ही ये आशीर्वाद सबको बिखरता रहे, यही तो मेरी अभिलाषा है, ये मेरी कामना है।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर स्थानीय निवासियों का उत्साह भी चरम पर है। घर घर में जन्मोत्सव मनाने की तैयारियां की जा रही हैं। ब्रज की लोक परंपराओं एवं रीति रिवाजों के बारे में बताते हुए स्थानीय निवासी,
3: भैया जन्माष्टमी आ रही है, भादों कृष्ण पक्ष अष्टमी, हमारे ठाकुर जी का जन्म तिथि, जन्म महोत्सव, वर्षगांठ और तैयारियां बहुत पहले से शुरू हो गई हैं। घरों में रंगाई पुताई कराई जा रही है, मंदिरों को स्वच्छ किया जा रहा है, दरवाजे पर बंधनवार बन रही हैं, ध्वजा पताका तोरण कलश सजाए जा रहे हैं और जिनके यहाँ वाहन हैं, हाथी घोड़ा पालकी, हमारे यहाँ गायें हैं, हम गायों को सजा रहे हैं और नगाड़े तैयार हो रहे हैं, धुंधवी तैयार हो रही हैं, ढोल ढप मृदंग झांझ झड़ताल ये सब बजेंगे और जो कवि जन हैं वो नित्य नई नई नई बधाइयाँ रच रहे हैं कि मैं ये बधाई गाऊंगा, मैं ये बधाई गाऊंगा। और घरों में पंजरी की तैयारी है, भगवान को पंजरी का भोग लगाया जाएगा, 7 प्रकार की पाग बनेंगी, बादाम की पाग, पाग माने एक तरह की बर्फी होती है हमारे ब्रज में, इसको पाग कहते हैं, जो जच्चा को भोग लगाया जाता है कि यशोदा के लाला हुआ है, तो जच्चा और बच्चा ये दोनों का भोग लगाने का ये सामग्री है पाग। तो खरबूजे के बीज की पाग, मिंगी की पाग, काजू की पाग और चिरौंजी की पाग, ऐसे 7 प्रकार की ये पाग बन रही हैं। लोग नए नए कपड़ा बनवा रहे हैं, जो गोपियाँ हैं, महिलाएं हैं, वो तरह तरह के लहंगा ओढ़ना चुनरी पहनेंगी, अनेक प्रकार के गहने धारण करेंगी, सोले और श्रृंगार करेंगी, और जो पुरुष हैं वो जामा पाजामा बनवा रहे हैं, पगड़ी बनवा रहे हैं, सिरपेच बांधेंगे, माला पहनेंगे, कड़े कंठा पहनेंगे और ठाकुर जी को सोने के पालने में विराजमान किया जाएगा। 5253वां भगवान का ये जन्मगांठ है, जन्म महोत्सव है, तो पूरे मथुरा में और तो सरकार के द्वारा चौराहे सजवाए जा रहे हैं, सड़कें सजवाई जा रही हैं, जगह जगह रासलीला दिखाई जाएगी, भगवान की लीला दिखाई जाएंगी, जगह जगह सेल्फी पॉइंट जो आधुनिक व्यवस्था है वो की जा रही है, कहीं कहीं कृष्ण लीला होगी और घर घर में तैयारियां हो रही हैं।
4: तो हम लोगों को बड़ा ही उल्लास रहता है क्योंकि हम लोग ब्रजवासी हैं, तो घर को स्वच्छ करना, घर को सजाना और ठाकुर जी के मंदिर को सजाना, उनके पर्दे पलना ये सब कुछ तैयार करना, उनकी ड्रेस लाना, पोशाकें लाना, उनके लिए श्रृंगार का सामान लाना।
1: श्री कृष्ण जन्मोत्सव के इस पुनीत अवसर पर दूर दराज से लोग मथुरा पधार रहे हैं, अपने आराध्य की एक झलक पाने को लोग लालायित हैं। ब्रज में पधारकर वो कैसा अनुभव कर रहे हैं और स्थानीय तौर पर नगर निगम प्रशासन तथा पुलिस व्यवस्था के बारे में अपने अनुभव साझा करते हुए बाहर से आए कुछ श्रद्धालु।
4: जन्माष्टमी के उपलक्ष्य

0: आपके यहाँ दर्शन करने आए थे, हमें यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हम पहली बार यहाँ आए थे और चाहेंगे कि हम बार बार यहाँ आए। यहाँ बहुत साफ सफाई है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगा।
1: मैं मध्य प्रदेश राज्य के छिंदवाड़ा जिले से हूँ और मैं यहाँ श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कृष्ण की बाल लीलाओं से संबंधित और भी जो विशेष कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जाते हैं उनको देखने के लिए, उनको जानने के लिए मैं यहाँ आया। तो मुझे भगवान कृष्ण की लीलाओं से संबंधित बहुत ही आनंद यहाँ प्राप्त हुआ। पूरा मथुरा ये मान के चलिए कृष्णमय है और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही उत्तम है। हर जगह मैं ये कहना चाहूँगा कि कृष्णमय है।
2: अभी आप सुन रहे थे श्री कृष्ण जन्मोत्सव पर्व पर ब्रज में आयोजित विविध कार्यक्रमों पर आधारित पूर्वावलोकन रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर संजय सारस्वत का था, प्रस्तुति संजीव कुमार व्यास की एवं संयोजक थे ओपी सिंह। ये कार्यक्रम मथुरा वृंदावन आकाशवाणी के सौजन्य से तैयार किया गया।
3: ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित है।

ओम नमः शिवाय। इस विशाल ब्रह्मांड के सृजनकर्ता, पालनकर्ता और संहारक, सर्वोच्च शक्तिशाली, आदि और अनंता, देवादिदेव महादेव की महिमा का वर्णन तो वेद पुराण और शास्त्र भी नहीं कर सकते हैं। सुर असुर, मानव और दानवों के इष्ट देव, करुणामयी भगवान सदा शिव ऐसे महादानी और वरदानी हैं कि जिनकी स्तुति संपूर्ण करने के लिए अनंत जन्म भी कम पड़ जाएंगे। किंतु यह भी सत्य है कि भगवान शंभुनाथ की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न करने के लिए श्री शिव चालीसा सर्वोच्च और शुभ फलदायी माना गया है। श्री शिव चालीसा का पाठ सुनने वालों के लिए उतना ही कल्याणकारी है जितना कि पाठ करने वालों के लिए। इसका नियमित पाठ करने से सभी प्रकार के मनोरथ, जैसे घर में सुख शांति, धन यश, वैभव में वृद्धि होने के साथ साथ सभी प्रकार के रोगों और दोषों का सर्वनाश भी होता है। जिस प्रकार भगवान शिव किसी एक जाति या धर्म विशेष के नहीं है, वो तो सभी के इष्ट हैं। ठीक उसी प्रकार श्री शिव चालीसा की स्तुति का समान रूप से अधिकार इस चराचर जगत के सभी मानवों को है। मन के पावन भाव से की गई भक्ति से हर्षाने वाले श्री शंभुनाथ को शिव भक्तों की ओर से समर्पित है श्री शिव चालीसा।

0: ओंकार
1: गॉड इज ओनली वन
0: सत नाम
1: हिज नेम इज ट्रू
0: कर्ता पुरुष
1: ही इज द क्रिएटर
0: निर्भय
1: ही इज विदाउट फियर
0: निर्वैर
1: ही इज इनिमिकल टू नन
0: अकाल मूर्त
1: ही नेवर डाइज
0: अजूनी
1: ही इज बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ
0: सैभंग
1: ही इज सेल्फ इलिमिनेटेड
0: गुर प्रसाद
1: He is realized by the kindness of the true Guru.
0: Jap.
1: Repeat his

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।